पकड़ पकड़ते हो कीते तू क्या माँ की ना की उतर क्या माँ तरा तरा की तू ए यक्याना ते आता कुदा ए चियो ए क्या ए होमा वान वान हरमाई ते तो